तेरी सार करे हम हर के बालक, मुंह मंगा सोई देवदा, हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दाम, अवगुण को न चितार दाम, गल से ती लायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

मन बाचित सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे,

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत सद

भूले, कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथो ताहे कैसे, कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छोर प्राप्त होती कितने बड़े भाग होते हमारे। गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जानता है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष कीती जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड़ा वड़ा महात्म क्यों है, ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान कर दे बई वाहेगुरु शब्द

नांदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठिया ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने। की गल, गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, आ तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खिलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां प्रक्रमा कीतियां, पंज पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया। अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच जिने मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे दा दर्शन करे। जिने मेरे नाल बचन करने होण, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी प्यार नाल पढ़े। मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया दा धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत दा भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकण वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सर्वत दा भला करना है, दूजियां दा धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दित्ती। मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए, किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा है, होर भी कोर पाप करदा है। घरां विच्चों कीमती समान भी लुट लिया ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜੇ ਵਧੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਵਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार दिंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई। चाल ठीक हो गई और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्ला होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगदा है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवै, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, लक्षण बदल गए, शुभ मार्ग पै गए, सतगुरु ने पा लिया मार्ग पाए उद्यान में भटकदिया फिरदिया उजाड़ा विच भटकदिया सतगुरु ने गुरमत दे राह ते पा के जीवन का ऐसा प्यारा भेत समझाया। हालात सुहावने होंदे चले गए, जो ख्यालात सुहावने हो जान, ख्यालात नेक हो जान ते हालात भी चंगे हो जान। हालात बंदा आप ही खराब कर लेता, दोष हालात नू देंदा है, लेकिन हालात नू खराब करना मनुख दे अपने कमां दे सामने हो। गुरु के लड़ लग जाइए लक्षण बदल जाते, हालात भी बदल जाते, हालात भी चंगे हो जाते। वो जेड़े हालात महाराज ने इत्थे जिक्र किया है, प्रभु हिरदे च वस गया, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नठ उठे, पंच चोर आगे भागे, गुणा दी पूंजी पूंजी सावत कणो लाभ, रे शोभा सेत हिरदे घर विच शोभा शोभा हो गई। वडियाईयां ही वडियाईयां आ गई और सतगुरु ने तो बड़ी कृपा की, दून चौनी दे वडियाई शोभा नीता ली, मेरो गुर रखवार उम्मीद, बुराइयां तो मैनू रख लैण वाला मेरा सतगुरु, मेरा मित्र, मेरा अपना, मेरा सखा, उसने बड़ी कृपा की है मैनू बुराइयां तो बचा के धर्म दे मार्ग ते पा के वडियाईयां दे राह पाया। दून चौनी दे वडियाई शोभा नीता नीत, नित नित वधदी शोभा, जिसनू अपने ता प्रवान करन सो करन, ओपरिया ने भी सिर मथे प्रवान किया नहीं, दुश्मना ने भी सिर मथे प्रवान किया। आप पढ़ते हैं इतिहास, साडे अपने कोल तां लिखिया ही ना गया, लिखण दा वक्त ही नहीं सी, अपनी रिपोर्ट आप तैयार करन दा समां ही नहीं सी, खालसे सिख कोल अपनी गल लिखण दा समां ही ना मिलिया। गुरी को गुरु की गल नूं समझदे आं ते कमांदे आं, समें दीआं हकूमतां दे नाल टक्करां लैंदे आं, कुर्बानियां देंदे आं, सेवा कमांदे आं, त्याग करदे आं, इस नूं इतनी फुरसत नहीं लिखी कि मैं की कर रहा कितने लिख भी देव, लिखना दूजिया नूं पिया ते ओ निष्पक्ष नहीं सन, लिखण वाले निरपक्ष ना रह सके। जे किसी साध ने उदासी ने लिखिया तो उन्होंने भी रखता सी ये मत, क्योंकि गुरमत जेड़ी है पाखंड ते बहुत वड्डी चोट है, ते जिने जिस वेले उन्होंने लिखिया अपनी मनमत ते अपनी दम वाली बिरती ते पैंदी सट नूं कदों ठीक तरह लिखणगे, उन्होंने ईमानदारी नहीं वरती, ते जिन्हां नाल सीधियां टक्करां लगियां हैं सर उन्होंने की लिखना सी, उन्हें तो लिखण लगे इतिहास लिखिया है ते सिख ना लिख के सग लिखते। लेकिन एक बड़ी कमाल की गल, उधरों सग भी कहें, कुत्ता भी कहें,

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, अज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नू मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानू प्यार दिया, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लेना नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहंदे आ इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा एही कुछ कह रहा सी, भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं

फरीद जी ने मनुख नू समय दी कदर करन वास्ते प्रेरणा की थी। सतगुरु कहंदे ने सारियां जूनां दा सरताज बना के मैं तैनू संसार विच भेजिया। आम बात है कि जेड़ा वड्डा होवे ओदी जिम्मेवारी भी वड्डी हुंदी, वड्डे दी जिम्मेवारी भी वड्डी। साहब कहंदे ने इस धरती में तेरी सिकदारी, वड्डे वड्डे शीं बघेले नथां पाई फिरदा इंसान, बड़े बड़े जरीले नाग पटारियां विच बंद करी फिरदा। सतगुरु कहंदे ने पर तेरा कोई फर्ज भी है, तैनू नाम जपण वास्ते भेजिया संसार विच। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, ए समा है तेरे नाम जपण दा। तां बाबा फरीद ने चेतावनी दित्ती, हे भाई जदों दरिया विच थोड़ा थोड़ा पानी होवे ओदू तां बेड़ा तैयार कर लै ताकि समय नाल तू पार लंघ सके, ते जदों दरिया विच तू ग्यानी आ गई, तूफान आ गया, दरिया ठाठा मारदा होवेगा, उस वेले मित्रा पार नहीं लग्या जाना, फिर तां डुबण दी गल ही है। इस करके कृपा कर, नाम जप, नाम दा बेड़ा तैयार कर ताकि समय नाल तू भव सागर तर सके। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी विच बाबा फरीद जी प्रेरणा दे रहे ने, ते सानू चेतावनी कर रहे ने, भाई समय दी कर

और है तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपन वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

0: जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, गुण गावत ते पुत्र समै सच्चे के गुणगान, गुण गावत तेरी
1: पुत्र समैल
0: फिर सजाए हो मैं दुख है जन्म कर्म।

0: करती हूँ हर जैसे माँ राजू बाबा आई पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नुआंदी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नू भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नू तपते थम नाल जफी पाण दा हुकम दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पाले तत्ते थमा नू जफिया आपे तेनू रलम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पा ली पर उहदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी, मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी महिला मेरी औलाद को पुठे पार पढ़ाए जा रहे। अज तो बात फिर करी ऐसी गल की थी तो मैं इसी सलाह दिया कि लोग है

अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, सिमर सिमर सिमर नाम जीवा।

ते मेरी जिम्मेवारी है कि बच्चे नु बचाउणा। साहब कहंदे ने चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेल है, हाथ नाल फड़दा सप नु अग। माता पिता कंठ लाए राखे, मां प्यो फड़के तू के छाती ना लड़ मिले की करदा। ज्ञान देंदे ने ए फड़न वाली चीज नहीं है, फड़न वाली चीज ए नहीं है, फुल दे देंगे हाथ में, फड़न वाली चीज ए है। कोई खिडौना दे देंगे, फड़न वाली चीज ए है। ये ख्याल करना बच्चे ने खिडौना ले लिया, खिडौना बड़ा प्यारा है, फुल बड़ा प्यारा है, हुण ओदे कोल मां बाप नूं खतरा कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, फुल पकड़ी रखे खिडौना पकड़ी रखे। लेकिन बच्चे नूं की हो गया, बच्चा वह खिडौना ते फुल लैके मां की गोद छड़ गया, बाप की गोद छड़ गया, अगां पिछा हो गया, खेलता फिर मां आवाजा मार दी ते वो पकड़ाई नहीं देंदा। अगे अगे खिडौना लैके बच्चा है, पता नहीं उन्हें डर है मां खो ना लवे, कैसी कह। अनज्ञानता की गल है कि जिस मां ने खिडौना दिता, जिस बाप ने दिता, उन्हें खोन वास्ते थोड़ा दिता, होर भी देगा। लेकिन बच्चा घबराया है कि मेरे को खिडौना खुश ना जाए, अगे अगे बच्चा है मगर मगर मां प्यो ने कोई नुकसान ना उठा, कोई गलत ना इहदे कोलो गलत क्रिया ना हो जाए, खिडौना सुट ना पवे या इसे खिडौने की गलत वरतों करके कोई नुकसान ना उठा पवे। लेकिन दूजा बच्चा एक होर भी है, उन्हें खिडौना ले लिया ते मां की गोद नहीं छड़ता, मां कहती है जा तू हुण खिडौने नाल खेड मैनू कम कर दे, लेकिन वह मां की गोद नहीं छड़ता, खिडौना भी लई बैठा है, मां की गोद च भी बैठा है। यह दोहरा आनंद ले रहे हैं, खिडौने का आनंद भी लै रहा है, मां की गोद की निक भी लै रहे, आप भी लै सकते। ऐसे बालक बने रहिए ना, ऐसे चंगे बच्चे बने रहिए, गुरु की उंगली भी पकड़ी रखी, गुरु की गोद भी ना छड़िए, गुरु के बख्शे पदार्थों का भी आनंद लेंदे रहिए, गुरु किया बख्शिया दातों का स्वाद भी लेंदे रहिए। ए नहीं दात लैके खिडौना लैके गुरु नूं छड़ जाइए, प्रभु नूं छड़ जाइए, नहीं ऐसा नहीं, वह तो दयाल है। पिता कृपाल आ गया ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, जो मंगदा दियो। चंगे बच्चे ते खुश हो गए, दियो इनू जो मंगदा है, जो अरदास करदा दियो इसनु। पर बारक की पे मंगदा है, गुरु नानक बालक बन गए, कहंदे ने नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोह हृदय बसे नित चरना। मैं तो होर कुछ नहीं मंगदा, जो कुछ देवे मेरे पिता जो तेरी मर्जी है दे, पर मैं तो यह मंगना कि तेरे चरणा च मेरा वास्ता बने। और कहंदे ने शास्त्रकार एक छोटी दृष्टांत मात्र गल कहंदे, कहंदे ने मेले च दो भरा अपने बच्चियां नूं लैके गए, बच्चियां ने बापां दी उंगली पकड़ी, मेला दिखाया जा रहा है, भांत भांत दे पदार्थ उन्हां बच्चियां नूं बाप लैके दे रहे ते बच्चे खुश होके तमाशा देख रहे ने, पदार्थ छक रहे, बहुत भीड़ विच आ गए, तमाशा बड़ा रोचक है। दोवां बच्चियां ने तमाशे की रौचकता विच परच के पदार्थ खांदिया हुए, हथ वेले नहीं रहे, निगाह वेली नहीं रही, निगाह तमाशे वल है, हथ पदार्थ छकण वाले ने, ते जे माड़े मोटे हथ खाली होए ने तां एक दूजे दा हथ फड़ लिया, बाप दा हथ छड़ दिता, दोवां ने छड़ दिता। भीड़ बड़ी है, बाप दोवां दा हथ पकड़ के रखना चाहते, लेकिन भीड़ दे विच ओह तमाशा वेखण वास्ते सुतंत्रता चाहते ने, उस सुतंत्रता वास्ते दोवां ने बाप की उंगल छड़ दी। भीड़ के उन्होंने रेलिया उन्होंने तकिया बाप किधरे हो गए, बच्चे किधरे हो गए, फिर पल्ले की पै गया। एक बच्चे ने चंगाड़ा मारनिया शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, बहुत उची उची रोन लग पे। दूसरा हानी बच्चा कहिंदा रोंदा क्यों, कहिंदा पिता किथे है, बाप किथे है, हुण की करांगे, तो कहिंदा कुछ नहीं होता। उस बच्चे ने रोने करके चार सियाने बंदिया ने उन्होंने घेर लिया, उन्हां नूं तरह तरह के पदार्थ देंदे, उन्हां चुक के मारदे ने, कहिंदे ने नहीं चाहिए, वह परचाउंदे ने, खिडाउंदे ने, उह नहीं खेडदे। लेकिन जिहड़ा दूसरा बच्चा नहीं रो रहा, वह जे पदार्थां वल मूंह नहीं कर रहा, ते बहुत चीख झाड़ा भी नहीं पा रहा, गंभीर जरूर है, ते फिर उन्हूं लै गए ने सेवा समिति वाले, उन्हां ले जाके अपने तंबू च बिठा ले, वह बच्चा रोई जा रहा। फिर बच्चे बच्चे आपस च लग पे ने, कहिंदा क्यों रोना है भरा, वह कहिंदा रोना इस करके बाप तो विछड़ गया, तेनू कुछ नहीं हुंदा, कहिंदा बाप आपे लभ लेगा, मैनू कोई घबराहट, उंगल मैं छड़ी गलती मेरी है, पर मैं गलती कर सकना, वह नहीं गलती करेगा, वह लभ लेगा, होर थोड़ी देर तक आया कि आया, मैं तक कोई नहीं रोना, मैनू तक कोई घबराहट नहीं, मेरा चंगा बाप मैनू आपे लभ लेगा, मेरे को गलती, मापे को मापे नहीं होंगे, पुत्र को पुत्र हो सकते ने, मैं ओदी उंगल छड़ सकना, वह तो नहीं मैं छड़ेगा, वह भटकदा फिरदा होना, हुण झट तक आया कि आया, हुणे लभ लेगा मैं।
ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਛੁਡਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਂਗਲ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨਾ ਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਚ ਭਟਕ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਂਗਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਚੰਗ ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਤੇਰਾ ਵਿਖਮ ਭਾਵਣ, ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਆਪਾ ਸਭੂ ਮਤ ਸਭੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇ ਮੋਹਤਾਜ ਬਾਬਾ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ, ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰਨ ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੇ ਮਮਤਾ, ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕਰ ਰਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜੂਨਾ ਚ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਭਟਕਣਾ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਿਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲਈ ਚਲੀਏ, ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਲਈ ਚਲੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ।

देहो राम मसीत सोई, पूजा ओ निवाज ओही। देहोरा और मसीह पूजा अते निवाज इना नु एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इना विच फर्क समझदे ने उना दे मना विच ही नफरत रहंदी। सदियां तों

गंधारव, तुरक, हिंदू नाम वाक हैं, पहरावे भी वाक है, देश भी वाक है, और इन चीजों का असर इंसान से होता है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं आवे।

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो बने हैं ते फिर भाई फर्क की है फिर ये झगड़े क्यों ने।

मुसलमान अल्लाह नू याद करता है, हिंदू राम नू याद करता है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने, अल्लाह दा नाम लैण वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नू ए उपदेश, हिंदू नू की उपदेश है, कुरान पढ़न वाले हिंदू है, राम नू याद करन वाले हिंदू। अपने मन विच ए विचार कर, एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नू याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नू याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचे है दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नू याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नू प्या याद करता है, मकसद ते दोनों दा

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे,

कि सदियां तो उपदेश भी यही हो रहे है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो, ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने उन्हां दे राह छड़ दियो। भाई साहब जी बयान करते हैं, मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकदा है?

निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ये जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

और जिन्हां ने इंसाफ करना है, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी, रूमी जंगी दुश्मन दारा दारा कहंदे ने औरत नूं। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया? राजभाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया है, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून बहा देना इक औरत वास्ते। पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया, रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया? नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इन्हां राजियां महाराजियां दा, वजीरां दा की काम बन गया? अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पए।

हो जाओ निवाजू ही। ए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे है, अपने मन दे नाल विचार करो ते इस दा जवाब

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इस तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे, आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, और दूसरे पासे ब्राह्मण नु उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, तो फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान ही तो वेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं,

गुरु नानक साहब कहन लगे, बाबा आखे हाजी है भाई सुनो, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, जे अमल चंगे ने पावे ओ हिंदू है पावे ओ मुसलमान है उन्हां नूं रोना ही पवेगा, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर है ओदी निगाह विच नाम दे नाल कोई नहीं पूजिया जांदा, उत्थे ते जिहदे अमल चंगे ने उन्हूं ही आदर मिलेगा।

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करने वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म दी रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और यह जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलन की कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवे।

निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद अजूनी सैभंग गुर प्रसाद तक जदो गुर प्रसाद तक जदो आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी समाध लग गई। आवाज आई ऐ नानक की कर रहे हैं ता गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे निरंकार जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना ओ मैं जप रहा। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच जुगाद विच भी सच सी हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेई नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया बेबे नानकी दे कोल आया कहन लगा बेबे पाया जी किथे है पाया जय राम भी बैठा सी आख्या गुरु नानक वेई नदी विच नहाउण वास्ते गया ते उधर कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा ते भाई जय राम घबराया बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी भरोसे वाली सी कहन लगी किवें ना आखो मेरा नानक संसार विच डूबण वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारण वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारण वाला है ओ कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया आवाज आई बेबे करतार चित आवे उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया गुरु नानक सच्चे पातशाह सामने बेबे नानकी दर्शन कर करके बलिहार हो रही। ए उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर संसार विच हुण जगत जिया नूं तारन वास्ते निकल पए। जिथे किथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह गए जे सज्जन ठग कोल गए तां सज्जन ठग नूं ठग तों संत सज्जन बना दिता जे भूमिए चोर कोल गए ते भूमिए चोर नूं साध बना दिता साधु बना दिता। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े रीठे ते पई तां ओ रीठा कोड़ा ना रहा मिठा हो गया। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े राक्षस ते पई ते ओ राक्षसी बुद्धि छट गया क्योंकि गुरु नानक है ही एडा मिठा जो कोई भी जिस किसे ने भी गुरु नानक दे चरणा दी शो पाई ओ मिठा हो गया। सत्संग बोलो श्री इस वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे हैं।

अहंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर का नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणे। सत सचित बोलो श्री जिवे एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह पानी विच कहंदे हन प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, मैं अनेक कर्म करके वेख ले हन, लेकिन एक प्रभु दे सिमरन तो बिना इस जी दे नाल किसे ने नहीं जाना। साथ सगत बोलो श्री जदों ऐसा सच दा उपदेश पंडित जी नूं दिता बहुत संगत उथे आ के गुरु नानक दे दर्शना ते जुड़ गई। ते उस संगत विच एक छोटी जी 10-12 साल दी एक बच्ची भी सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या पंडित जी इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कितने श्वास हैं बाकी कितने नहीं, आ भरोसा ता एक पल दा भी नहीं, इतना भी भरोसा नहीं कि जेड़ा श्वास असी छड्या पता नहीं ओ वापस आउंदा के नहीं आउंदा। सत सचित बोलो श्री इस वास्ते नहीं भरोसा इस जीने दा। ऐसा सच दा उपदेश जदों उस बच्ची ने सुनिया कि इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है, ता अगा होके जिते गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा ते सिर रखिया, गुरु नानक दे चरणा दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए, कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानू इस संसार सागर तो पार करना है। ए उपदेश जदों सुनिया ए बच्ची भी ए उपदेश पल्ले बन के बह गई और गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नूं तारदे होए अगे निकल पए।

देहरा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों

ब्रह्म सूदवैस और हिंदू और मुसलमान दो वटिया कौमा और दोनों का ही झगड़ा सदिया तो चलिया आ रहा है पर गुरु नानक दे घर का उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन भाई साहब जी बयान कर दे चार वारन चार मजहबां

मन विच बखीली होवे नफरत होवे ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी इहो समझांदे ने कि मना विचों जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

जाओ निवाजू जी। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे है। अपने मन दे नाल विचार करो ते इस दा जवाब खुद मिल जाए।

दिल मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान यो कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे नाल

गुरु साहबान ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसे फिरके दे खिलाफ नहीं, वो जुलम दे खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करने वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ए इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुलम करन वाला और एक जुलम नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुलम करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुलम दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए, और ए जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां दईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा।